0: कौन सा? इधर है उधर है, चार जगह स्टेशन के लिए।
1: पर फास्ट स्लो
0: तेरे कौन सा भी चलेगा?
1: हाँ ये ये ये वाला पांच नंबर नीचे नीचे लेफ्ट वाला।